0: गोया इला मरानी कैसेट एल्बम का समले बरसानी एंड द एल्बम नेम इज फ्रिक.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.